0: मा और की दकड़ी रिंबो
1: ना का है
0: कोकरा मगाजिया मोन
1: इंदे
0: कोकरा
1: सलामा ना डायमंड ने मुकाया